0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: तू लव करती है ना मेरे से? बस
2: लव है तो सब है।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
0: Big 106.2 The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड मॉर्निंग, 7:08।
2: Bollywood.

0: सात बजकर 11 मिनट यू नो व्हेन जब कोई छुट्टी से वापस लौट के आता है तो थोड़ी उल्टी गंगा होती है, टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू काइंड ऑफ वार्म अप टू द सिचुएशन. बताओ आप मुझे कि क्या हो रहा है भाई.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Feeling a bit relaxed, a bit too relaxed. Ho sakta hai. We'll find out during the course of the show. 11 baje tak, this is the show that gets you up and running. It's called The Big Breakfast with me, Sid. There's so much coming up. Of course, just like every day in the morning, main bhula nahi hu. The first hour of the show is called The Early Morning Request Hour. Kaun sa wo gana hai that inspires you, gets you up and running in the morning? Let me know. Request for it on our Insta number keh raha hu. WhatsApp number 0543091062. That's our number. WhatsApp 0543091062. मेरा नाम है सिड, बट दिस फिल्म दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, प्रियदर्शन की फिल्म हैवान से सॉन्ग्स कमिंग अप. प्रीतम चक्रवर्ती का म्यूजिक है, दिस कुमार एंड राघव चैतन्य एज वेल. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.
1: बिग

0: 7:21 on the clock on this Monday ki subah, start of a brand new week. It's the 14th of September. This is The Big Breakfast.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: And what are the headlines for this day? Aaj Barfi, agar aapko yaad hai, Ranbir Kapoor ki Barfi, one of my favorite movies of all time, that is celebrating its 14th birthday today, 14th of September 2012 mein ye film release hui thi. Then it is Ayushman Khurana's 42nd birthday today as well. We will celebrate somewhere down the line in this show. Big Bollywood quiz bhi hum log karenge. And of course, to all of you, sabse pehle, the first song of the hour was dedicated to the Ganpati Utsav today. Aaj Ganesh Chaturthi hai, so aap sabko hum sab ki taraf se bahut bahut mubarakbad. And of course, aap jante hain, it is festival time at Big.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: नया हफ्ता यानी कि नया मैकेनिक हम लोग ढूंढने वाले हैं, यानी गाड़ी वाला नहीं, ये कॉन्टेस्ट मैकेनिक्स. यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट टुडे. इट्स गोइंग टू बी अ न्यू ब्रांड न्यू कॉन्टेस्ट. ये क्या है बताऊंगा, लेकिन द रूल्स रिमेन द सेम टू गेट वन स्टेप क्लोजर टू विनिंग दिस ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग. क्या करना है आपको, बिग चेक इन स्पेस अपना नाम, यू हैव गॉट टू मैसेज दैट, व्हाट्सएप इट टू 0543091062. ये नंबर अभी तक आपको बाय हार्ट हो गया होगा, लाइक वी यूज्ड टू से इन स्कूल, बाय हार्ट 0543091062. टाइप आउट बिग चेक इन स्पेस your name and send it to 0543091062. Hans Raj Hans and Dil Chori coming up in just a while right here on a Big 106.2, a part of the Fun Asia Network.

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग 7:26 ऑन द क्लॉक, नाइस एंड स्टेबल वेदर, 32 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, मोस्टली सनी स्टार्ट टू दिस मंडे मॉर्निंग, ह्यूमिडिटी एट 62%, विंड्स ब्लोइंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 32 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. TNC apply.
3: We have insured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
4: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Well, there's a traffic update. Aaj subah se 311 par Sheikh bin Rashid Al Maktoum Street, 311 portion of Abu Dhabi. वहाँ पर स्पीड लिमिट इज ड्रॉप फ्रॉम 120 टू 100 किलोमीटर्स पर आर। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑल दोस क्रूजर्स आउट देयर। एक बार फिर 311 का जो अबू धाबी सेक्शन है वहाँ पर 120 से कम होके स्पीड लिमिट इज डाउन टू 100 किलोमीटर्स पर आर। चलते हैं 44 पर अलखेल रोड, इज अ बिट ऑफ कंजेशन ऑल द वे फ्रॉम रसल खोर टिल अबाउट अलकूस फोर्थ, देन अ बिट ऑफ साउथ बाउंड ट्रैफिक एट ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट 311 एट E11 दैट इज शेख जायद रोड पर, एंड देन 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग towards Dubai from Sharjah. As usual, you'll find 5 to 8 minutes delay. Beirut Street is also getting quite congested heading south, going to right after Madina Mall, and safe zone ki taraf jata hua traffic on 88, and this is right after you cross Oasis Mall in Sharjah. In case you spot something, give me a call. If it's safe, 800-1062.
4: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. TNC apply. Big 106.2.

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक. गुड मॉर्निंग. 8:11. बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: 101.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
3: इंश्योरेंस मार्केट .ae Car, health, home, life, travels or business. Over 30,000 Google reviews and even a metro station named after us. Call 800-ALFRED.
4: Okay, we get it. Papa.

0: It is 8:25 on the clock on this 14th of September, Monday ki subah. And last evening, Sasha Zverev became the US Open champion.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: अरे इसका हम देसियों से क्या लेना देना यार, हम लोग तो टेनिस नहीं, हम तो क्रिकेट देखते हैं यार. नहीं बट इट वॉज क्वाइट एन इनक्रेडिबल थिंग. आपको इस बात को सुन के मजा आ जाएगा. आफ्टर ही वन द US ओपन एंड जो यू नो उनकी स्पीच होती है, द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन इन क्रिकेटिंग टर्म्स, उसमें उन्होंने एक बात कह दी जिससे कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही रियलाइज दैट ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ वेरी कॉमन डिजीज.
2: देन आई वांट थैंक एक्चुअली वन मोर पर्सन हु इज नेवर एक्चुअली वॉचिंग माय मैचेस बट इज the most important person in my tennis life and in my life in general, because when your four-year-old son gets diagnosed with diabetes and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son... My son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. If he wants to do something else, he'll do something else. But this illness will not define us. And I'm happy that we worked through it.
0: That is absolutely incredible. I mean, Sasha Zverev, US Open champion, is suffering from diabetes since the age of 4. मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में यार. आई मीन टॉप लेवल स्पोर्ट्स एथलीट डिस्पाइट इन लेस कैंड ऑफ जस्ट गिव्स इट ऑल द मोर यू नो एक ऑल द मोर हीरोइक फ्लेवर उसमें आ जाता है राइट. सो या ज़वेरेव नाउ, अब बताएं यूएस ओपन चैंपियन साशा ज़वेरेव, वी बीट बेन शेल्टन, अच्छा खासा फाइनल मैच कल हुआ था. बट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर यू नो लेजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन हु एक्चुअली वॉज द पोस्टर बॉय ऑफ द फाइट अगेंस्ट डायबिटीज, पाकिस्तानी एक पेस बोलर, एक सुल्तान ऑफ स्विंग उन्हें कहा जाता था. अगर आपको पता है कि विच पाकिस्तानी पेस बोलर एक्चुअली सफर्स फ्रॉम डायबिटीज एंड यू नो लाइक आई सेड ही वाज लाइक द मैस्केट इन द फाइट अगेंस्ट डायबिटीज, काफी साल के बाद पता चला कि ही हैड डायबिटीज. तो अगर आपको पता है किसकी बात कर रहा हूँ, सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062 पर. कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल.
3: तो समझो ना मेरे दिल की
0: यार, न्यूमरोलॉजी इज ऑल वेल एंड गुड, लेकिन जब नाम पता नहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी. ये VVAAN नाम की एक फिल्म है, इज इट फान और विवान, आई डोंट नो व्हाटएवर इट इज, उस फिल्म का एक ब्रांड न्यू ट्रैक इज कमिंग अप इन जस्ट अ व्हाइल. इट्स कॉल्ड समझो ना, तरिश बागची का ये गाना है. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सो फिल्म का नाम होना चाहिए वन, राइट? वन, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट. बट नहीं, इट इज VVAAN.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Why am I saying that it has to be a one is because it's an action adventure fantasy film isko produce kiya Ekta Kapoor ne, and yeah, mystery thriller, itne sare genre ek saath. एडवेंचर, एक्शन, फैंटेसी, मिस्ट्री, थ्रिलर, पांच पांच जॉनर एक साथ बता दिए. व्हेन यू गूगल सर्च फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म, इट रिलीजेस ऑन द 25th ऑफ सितंबर, 11 डेज के बाद. दीपक कुमार मिश्रा इसके डायरेक्टर हैं, एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना भाटिया की ये फिल्म है. बट द सपोर्टिंग कास्ट इज इक्वली इंटरेस्टिंग, इफ नॉट मोर, बिकॉज देर इज सुनील ग्रोवर, श्वेता तिवारी, Anoop Soni, who's just recently said goodbye to you know what, and then Manish Paul is also going to be in this one. Sunil Grover, Manish Paul, ek saath. Very interesting. Anoop Soni, Shweta Tiwari, saath mein Siddharth Malhotra, Tamanna Bhatia. And what is the plot summary? Ek rational urban man goes against his ancestral village's forbidden forest rules. And wo jab neend se jaagta hai, to a divine goddess and you know supernatural forces and faces. He has to face, and then he must become the savior who protect. Pata nahi. Yeah, so it's like you know, lots of genres coming together. Dekhte, lag to interesting rahi hai. Aage aage dekho, hota hai kya? Lekin aapko pata hai aapko kya karna hai? You got just about half an hour to go to send your entries in. Big check-in space. Apna naam apne bheja ki nahi? WhatsApp karo 0543091062 par.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
0: Like I told you, ये सारे हफ्ते हम लोग GK का फुल फॉर्म जनरल का नॉलेज नहीं करने वाले हैं. इज गोना बी जर्मन नॉलेज, बिकॉज आपकी जर्मनी के बारे में कितनी चीज़ें आपको पता है, ये हम टेस्ट करने वाले हैं. डोंट वरी, इट्स नॉट गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. आप जानते हैं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. इजीएस्ट वाली बात है. सो इन केस यू नो टेक पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट, एंड हु डजंट वांट टू विन एन ऑल एक्सपेंसिस पेड ट्रिप टू जर्मनी विद टीम बिग, क्या करना है आपको? बिग चेक इन स्पेस अपना नाम, टाइप आउट बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड व्हाट्सएप इट राइट नाउ टू 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: School's starting soon and we need a car.
4: And books, uniforms, everything.
3: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
5: And what if we need it for a short while?
3: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
6: Already bought insurance somewhere else? Maybe don't check insurancemarket.ae now. You might wish you had checked before. Next time, compare first. 800 Alfred. Insurancemarket.ae.
1: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
0: It is 8:46 on the clock. Let's start from the capital, Abu Dhabi. Aapko halka bulka traffic milne wala hai at Musaffa Industrial E30, and this is going towards Rabdan. Rabdan mein on E20 you'll find a bit of congestion, also heading towards Sheikh Zayed Grand Mosque on 22, and then a bit of traffic E10 par aapko milne wala hai, and this is going towards Eastern Mangroves. E22 पर भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक अबू धाबी यूनिवर्सिटी की तरफ जाता हुआ 7 से 10 मिनट का कंजेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। देन देयर इज दुबई शारजा हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा एट 311 E11 बोथ दीज आर्टरीज विल फाइंड 8 से 10 मिनट की देर। देन देयर इज अ 12 मिनट डिले आज E88 पर गोइंग टुवर्ड्स सेफ जोन एंड फर्दर टुवर्ड्स शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑल्सो E11 पर हेडिंग साउथ आफ्टर अजमान इंडस्ट्रियल 2 यू विल फाइंड 5-6 मिनट की देर। E11 311 पर ट्रैफिक आपको मिलने ही वाला है heading south and then there is also Beirut Street right outside Medina Mall in both directions north and south expect कीजिए 4 से 5 मिनट की देर।
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. TNC apply. Big 106.2.

0: 106.2. The beat of Bollywood. High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday. It's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany. Only on Big 106.2.
1: School's starting soon and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
5: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
4: अलरास बोले तो
5: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसलखोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
4: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: गुड मॉर्निंग, 9:17 ऑन दिस मंडे की सुबह। 35 डिग्री सेल्सियस, मोस्टली सनी स्टार्ट टू दिस वीक, ह्यूमिडिटी एट 44%, विंड्स ब्लोइंग एट 19 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 37, लोज ऑफ 32 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप और मैं उसके बारे में अगर सोचें, सम लिटिल प्रैंक, यू विल बी लाइक यार नहीं, ये सच अ सिली लिटिल थिंग. लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी करती है तो इट गिव्स इट अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्लेवर, राइट?
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? सैमसंग हैज कुक्ड अप समथिंग रियली यूनिक. दे हैव एक्चुअली गॉट टिम कुक टू से इन वन ऑफ देयर एड्स दैट ये जो नया सैमसंग का गैलेक्सी जी फोल्ड 8 है ना, अरे यार इससे अच्छा फोन तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया. टिम कुक सेइंग दिस अबाउट अ सैमसंग फोन. हाउ डिड सैमसंग मैनेज इट? बाय गेटिंग दिस गाय हुज नेम इज टिम कुक एंड ही लुक्स अ बिट लाइक टिम कुक, बट इट इज नॉट द टिम कुक, इट इज ए टिम कुक. सो इट इज अमेजिंग. न्यूजीलैंड में जाकर उन्होंने एक बंदे ऐसे बंदे को ढूंढा जिसका नाम एक्चुअली बाकायदा ऑन पासपोर्ट इज टिम कुक. Yeah, and he looks a bit also like the original Tim Cook, but of course he's not the Tim Cook. So, वो बैठकर उसको ad में ले लिया, feature किया, उसको पैसे भी दिए और बोले तो इस कुर्सी पे बैठ और बैठ कर तेरे को ये बोलना है that this phone, the Galaxy Z Fold 8, is the best phone that I've ever had. I mean, it's one of those practical jokes Pro Max here. When you know these big companies, they do it. I love it. My dil goes. Coming up in just a while. शान क्लासिक. कुछ देर में हम लोग खेलने वाले बिग बॉलीवुड क्विज एज वेल एंड पोस्ट 10 o'clock देयर गोना बी सम स्पेशल गेस्ट्स हियर इन द स्टूडियोज. ऑल थैंक्स टू आज ऑफ कोर्स आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: बिग 106.2

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:10।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: मेरा भी रिएक्शन यही होता है कि क्रीक के पास somebody says I asked you a global village जो करंट लोकेशन उससे पहले कहां पर लगता था and there somebody who said क्रीक के पास, मोहित ने कहा क्रीक के पास इन उदमी था। हाँ यही चक्कर, there is a particular नाम, एक particular उस जगह का नाम है, अगर आपको पता है तो WhatsApp it to me 0543091062 and background में आपको आवाज सुनाई दे ही गई होगी। The special guest that I've been talking about, they are here.
1: A bump, a break in, a hospital bill. Suddenly, insurance really matters. That's when insurancemarket.ae delivers. For claims or cover, call 800 Alfred.
0: As you can listen to that, no introduction needed. Aaj Ganesh Chaturthi hai and we've got our favorite. Mujhe lagta nahi ki meri awaaz sunai de rahi hai.

ग्रुप इज हियर इन द स्टूडियोज ऑफ बिग 106.2। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना तालियां सुनाई देने वाली है ना मेरी आवाज, बिकॉज ढोल ताशे नगाड़े सारा कुछ यहाँ पर इन द स्टूडियोज ऑफ बिग 106.2।

0: दैट इज द स्पिरिट ऑफ गणेश चतुर्थी. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आई डोंट नो इफ यू वर एबल टू हियर मी. आई एम प्रीटी कन्विंस्ड, आई एम प्रीटी श्योर यू वर नॉट एबल टू हियर मी, बिकॉज दैट इज द मैजिक ऑफ द थ्री विक्रम ग्रुप, आर फेवरेट म्यूजिक ग्रुप. एंड इट इज आर थर्ड ईयर कंसेक्यूटिव दैट यू आर हियर इन द स्टूडियो सबसे पहले हमारे साथ. सो वेलकम, वेलकम वंस अगेन. मेरी सांस फूल रही है, आई एम श्योर. पता नहीं कि आपका क्या हाल हो रहा होगा, बिकॉज दीज ड्रम्स दे आर हैवी गाइज, एंड यू नो दिस ओकेजन कॉल्स फॉर एज मच म्यूजिक एज पॉसिबल. ये पूरा फेस्टिवल ही म्यूजिक का है. इट इज अबाउट ढोल एंड ताशे एंड नगाड़े. सो क्विक इंट्रोडक्शन, वी ऑल नो दैट यू आर द थ्री विक्रम विक्रम ग्रुप, बट यू नो वी आर रेडियो, सो यू कांट सी यू. तो बताइए एक एक करके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर नेम.
1: So basically this is Trivikram Dhol Tasha Pathak, yeah. The first Dhol Tasha Pathak in entire Middle East, and we have been here for last 9 years. It's a 9 year going on
0: round. That is amazing, yeah. That is amazing. 9 saal se yahan par hai, ensuring ke Ganesh festival ki jo rang hai, yeah, usme zara sa bhi bhang na ho, right? I mean it should be celebrated in the way that it is meant to be celebrated.
1: Yes.
0: So welcome to the studios.
1: Thank you so much, Sid, and thank you Big FM for having us for the third year now.
0: Yeah.
1: And spreading the happiness through the music throughout the community.
0: Yeah, dibs kehte hai na ke first right hamara hi hai.

0: आपको पहले हमारे यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है, जो गणेश उत्सव का श्री गणेश है वो आप बिग 106.2 के स्टूडियो से करते हैं. सो टेल अस कि आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये दिन यार. मैं पूछूं तो वुड इट बी फेयर टू आस्क यू दिस क्वेश्चन?
1: नॉट एक्चुअली, बट सी वी आर रिप्रेजेंटिंग द इंडियन म्यूजिक, द फोक म्यूजिक स्पेशली इन यूएई, एंड इट्स बीन 9 years. तो हमारे लिए तो एवरी जो परफॉर्मेंस होता है इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज being in a city like Dubai, where you know there's an international crowd, it's a great opportunity to showcase our talent or our skills or our art and culture to the people. But definitely Ganesh Utsav to sabse stand out hota hi hai, and last I can say last 2 months everyone is doing rehearsals and getting prepared. इतना ही नहीं, हमने 130 न्यू मेंबर्स का एडमिशन लिया हुआ है इस साल.
0: कितने?
1: 130 जस्ट इन दुबई. अबू धाबी इज 80, वी हैव अ ब्रांच देयर एज वेल. तो इतने लोगों को ट्रेन किया है, प्लस हमारे जो पुराने हैं म्यूजिशियंस वो तो है ही. एंड आई एम प्राउड टू से दैट टुडे आई हैव दिस टू गाइज हु आर परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ.
0: फैंटास्टिक.
1: एंड दे आर हियर ऑन रेडियो. आई हैव आशीष पोतले एंड आई हैव विदेश खरावत, सो एंड मायसेल्फ सागर. सो दैट्स हाउ इट इज. एंड
0: सागर, एवरीबॉडी लिस्निंग राइट नाउ वांट्स टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन.
1: या
0: कि यार आप लोग प्रैक्टिस कहाँ करते हो?
1: प्रैक्टिस
0: मतलब
1: हम लोग,
0: कौन ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा सा म्यूजिक हाई हो जाता है तो लोग खटखट करने लगते हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हो भाई?
1: जी जी जी, नहीं इसके लिए हमको एक हैक निकालना पड़ा, एंड वी हैव टू हायर द साउंड
0: बोट. यू हैव टू हायर अ बोट एंड गो सी.
1: नहीं नहीं नहीं, दैट वुड बी द लास्ट ऑप्शन दो, बट थैंकफुली वी हैव सम साउंड प्रूफ ऑडिटोरियम्स एंड प्लेसेस वेयर वी कैन डू द रिहर्सल, जहाँ पे आवाज बाहर नहीं जाता है, सो मिनिमम जाता है काइंड ऑफ. सो दैट्स द प्लेस वेयर वी डू. Now, yesterday we were doing a rehearsal and it went on for 6 hours straight. But, you know, everyone is like enjoying because wo passion hai, wo energy automatically aa jati hai humko. Nobody has eaten for 6 hours or nobody has taken a break. 6 hours full on.
0: But your biceps look nice and pumped. All
1: we don't need to go to the gym, basically.
0: I'm sure you don't, because these drums are heavy. Last time, if you remember, maine koshish ki thi.
1: Haan.
0: I almost got a slip disc. But it's amazing, yeah, the energy that you guys show. But I'm very sure ki aap log na, are you guys from Mumbai as well?
2: Yes, yes.
0: Maharashtra, where? Mumbai?
2: Yes.
0: I'm sure thoda to miss kar rahe honge aap ke wahan pe jo no, har ek sadak ke corner pe अपने अपने जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, राइट, एंड दे आर ऑल काइंड ऑफ कंपीटिंग के सबसे लाउड कौन सा ग्रुप होगा.
1: सामने सामने आते तो और ज्यादा वो.
0: तो कितना मिस कर रहे हो आप?
1: बहुत मिस करते हैं, बट नाउ यू नो वी आर वेरी हैप्पी एंड यू नो थैंकफुल टू द लोकल अथॉरिटीज एंड एवरीथिंग दैट वी आर एबल टू डू दिस एंड प्रेजेंट इट हियर, एंड दैट्स अ प्लेजर. अभी इतना तो मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं.
0: दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट बीइंग इन दुबई, राइट, कि मतलब यू कैन सेलिब्रेट, नॉट जस्ट सेलिब्रेट बट सेलिब्रेट टू द फुलेस्ट, राइट, एंड इन द स्पिरिट दैट इज मेंट टू बी, वो पूरा का पूरा आप कैप्चर कर सकते हो कि जितनी जोर से आप ढोल बजाते हो जब बजना चाहिए उतनी जोर से आप बजाते हो, उसमें कोई कमी नहीं रहती है ना. सो टेल मी वन थिंग बिफोर वी काइंड ऑफ आस्क यू टू डू वन मोर परफॉर्मेंस, के कुछ एक अगर आप जो लोग अभी सुन रहे हैं, यू नो यू वांट टू टेल देम हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर group, you know, next year they can also be in the studios.
1: Yes, why not? I mean, definitely every year during July, August, we start our admissions and we take everyone, and it's a free of cost. We don't take any charges to teach anybody. It's our music, it's our art and culture. It's so we don't charge anything. But now the thing is that with saying this, we have like 100, 300 people coming in, and then it becomes a little difficult to reply everyone, and there's always a complaint ke Sagar kabhi reply nahi karta hai. I have people who say that main 3 saal se wait kar raha hu and finally mera number aa gaya. So that's the waiting list, but Trivikram Dhol Tasha is our Instagram handle, Trivikram Dhol Tasha, and on that you can contact us and we will share the form link. You can then, we will contact you guys.
0: Of course, and we're going to be putting up a reel about this wonderful performance also on our Insta 106.2 Big FM. Wahan par obviously you'll be tagged, so you can just go and you know DM them as well. And jab office mein thoda sa you know frustration वगैरह बढ़ जाए, this is the one thing that you can
1: yeah,
0: do.
1: Stress
0: you know?
1: relief. Yes.
0: हाँ, it's not just about Ganesh Chaturthi, लेकिन stress relief के लिए भी बहुत अच्छा है. So चलिए हो जाए थोड़ा सा stress relief यार.
1: Yes, yes.
0: In the spirit of Ganesh Chaturthi, आप सबको, हम सब की तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद. Here is the Trivikram.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2 The beat of Bollywood.
2: Many chances with big tickets.
3: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
2: Plus big spin and weekly e-draws.
3: Buy now at bigticket.ae.
4: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
1: Big 106.2. That's my song.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं? चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलरस से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलरस कहाँ है अलरस?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलरस है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलरस।
2: टू प्ले योर फेवरेट सॉन्ग व्हाट्सएप योर नेम स्पेस योर सॉन्ग एंड योर मैसेज टू 0543091062। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। We'll be right back.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Mix. Miss kiya gaya?
1: Kar hi nahi sakte. चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हाय शिवानी, मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी पर सिर्फ म्यूजिक सुनाऊंगी, ठीक है? आपको वो सॉन्ग गेस करना है।
1: ओके।
3: ये घुंघरू टूट गए।
2: ओह माय गॉड, 2 seconds भाई, 2 seconds भी नहीं लिए शिवानी ने। वाओ। देख लो, अब जनरल नॉलेज भी होती है तब भी इंसान जर्मनी जा सकता है, क्या पता क्या ना पता। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। एग्जैक्टली क्या किया था आपने, बताना फिर से।
1: सिर्फ बिग चेक इन, मेरा नाम भेजा था व्हाट्सएप नंबर पे आपके।
2: और बहुत सारे मैसेजेस शिवानी ने भेजे, इनफैक्ट जब वो टाइप कर रही थी मैंने उनको तभी कॉल बैक कर दिया।
0: चीयर योर मिडडे मूड मंडे टू फ्राइडे 1 to 5 PM द बिग मिक्स विद अवनी Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2, दैट्स माय सॉन्ग।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 1:10। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: द बेस्ट पार्ट अबाउट यूएई वेदर राइट नाउ इज इट्स वेरी वेरी वेरी लेस ह्यूमिड। आई वेंट टू द बीच यस्टरडे एंड इवनिंग्स रात के टाइम वक्त पे बहुत कम ह्यूमिडिटी होती है, बट राइट नाउ इट्स द आफ्टरनून टाइम 37 डिग्रीज आउट देयर विद 42% ह्यूमिड लेवल्स।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2 Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: went there, मैं पूरा नहीं घूम पाई थी और मैं एक ही दिन जा पाई, एक ही दिन निकाल पाई. बट दैट वन डे, तब भी वो रीओपन हुआ था आफ्टर 51 डेज 52 डेज आई गेस. एंड पहले ही दिन शॉपकीपर इतने एक्साइटेड थे, उन्होंने फ्री 20 तक मुझे दी थी. एंड दिस टाइम चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, मैं पूरा का पूरा घूमने वाली हूँ. एंड इमेजिन यार, एक घुमक्कड़ के लिए इससे बड़ा और क्या है, और क्या चाहिए यार मुझे,
1: और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए.
0: अब खाना पीना हो जाए, शॉपिंग हो जाए, एडवेंचर हो जाए, दोस्त

0: आगे पश्चिम को पलट ले, बहुत हो गया पिछले
1: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Listen to her every day.
4: Mugambo! खुश हुआ.
5: हाय गिरीश.
6: हेलो.
5: मैं बर्बाद कर दूंगी और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ. सडनली संजना हैज बिकम वायरल. आई डोंट नो किसने ढूंढ के निकाला है उन्हें इंस्टाग्राम से.
6: दिस इज वेरी बैक बट एटलीस्ट अ वेरी ट्रेंडिंग डायलॉग यू मेंशनड देयर.
5: तो किया है किसी लड़की ने ऐसे डायलॉग आपके साथ भी शेयर कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी.
6: वेल एक्चुअली आई एम सिटिंग वन नेक्स्ट टू द वन हु सेज दिस प्रीटी ऑफन. This Pragya on the line. You want to say hi, Pragya?
5: Hi.
7: I recently seen this trending everywhere and I'm vibing with this dialogue.
5: I know, right? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी. जरा recreate करो ना दोनों. मेरे पास तो है ही नहीं कोई बर्बाद करने वाला. You guys still have each other.
6: I'm already getting

0: बर्बाद.
1: आई एम ऑलरेडी गेटिंग आर्टिस्ट फॉर गेटिंग हर लाइव ऑन द रेडियो विदाउट गिविंग अ हेड्स अप. आई जस्ट पिक्ड हर अप आउटसाइड द हाउस. सो
0: ओह, यू गाइस आर डेटिंग.
1: वेल यस, वी आर.
0: वेरी नाइस.
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM. द बिग थ्रिल विद मानसी. ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: ट्रैफिक इज बिल्डिंग अराउंड बिजनेस बे टुवर्ड्स डाउनटाउन. अलखेल रोड E44 पर भी आपको कंजेशन मिल जाएगा. दुबई हिल्स वाली साइड E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर जनरली बिजी. ऑफ कोर्स आपको पैची ट्रैफिक यहां पर भी मिलेगा. अलसफा स्ट्रीट दैट टू न्यू डायवर्जन जो दोनों ही एक्टिव हैं आज इन बोथ डायरेक्शन. यू नीड टू चेक अप ऑन दैट. एंड कहीं और फंसे हो लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके.
2: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
4: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड घूमने की बातें हो रही हैं एंड बता दूं मैं आपको दुबई समर ऑफिशियल एंड्स ऑन सितंबर 23rd एट 4:05 मार्किंग द स्टार्ट ऑफ ऑटम और ये मैं नहीं कह रही हूँ ऑफ कोर्स दिस इज द ऑटम इक्विनॉक्स व्हिच इज द एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट मार्क्स द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ ऑटम जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर होता है लेकिन फॉर यूएई दिस ईयर द ऑटम इक्विनॉक्स अकर्स ऑन सितंबर 23rd एंड मिड सितंबर तो हो चुका है हल्का हल्का टेम्परेचर नीचे भी जा रहा है अक्टूबर तक शामी जो है और टेम्परेचर कम हो जाएगा 20 डिग्री से भी कम हो जाता है इन द नाइट्स एंड नवंबर ऑफ कोर्स डेज कैन ड्रॉप बिलो 30 डिग्रीज नाइट्स अराउंड 18 डिग्रीज उसके बाद रेनी सीजन शुरू हो जाएगा बट ऑल आई कैन हियर इज आउटडोर इवेंट्स आउटडोर इवेंट्स आउटडोर इवेंट्स
2: क्या बात है
3: लगने
1: भाई ऐसी घुमक्कड़ हूँ ना मैं कसम से बता रही हूँ घर पे मैं एक दिन से ऊपर नहीं बैठ सकती भाई एक दिन से ऊपर नहीं सोशलाइज करवाओ यार बहुत कुछ होना है अपकमिंग आउटडोर इवेंट्स यू कीप इट लॉक टू बिग 106.2 द बी ऑफ बॉलीवुड

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: क्या तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है?
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Well, sir, हम सैटरडे नहीं बच्चे भी करते हैं बिकॉज मंडे टू फ्राइडे भी तो स्कूल होते हैं बट फॉर दिस टाइम स्कूल्स कैन गेट प्रीटी इजी.
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं बात कर रही हूँ सेल्फ ड्राइव के बारे में. नाउ यू कैन गेट स्कूल रेडी विद सेल्फ ड्राइव. रेंट अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम 1099 दिरहम पर मंथ. फ्लैट रेट फॉर द ईयर. जीरो पेनल्टी ऑन अर्ली रिटर्न. सो बेसिकली आपकी स्कूल तक की राइड और स्मूथ हो जाएगी. आपको हर दिन सैटरडे जपना नहीं पड़ेगा यार. हंगामा मचेगा अब रोज स्कूल जाने का. कीप इट लॉक टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 2:06
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: changes
1: when
0: everything.
1: Something goes
0: when
1: wrong.
0: Something goes wrong.
1: InsuranceMarket.ae
0: is there for your claim.
1: There for your
0: great
1: claim.
0: Car insurance.
1: Great car insurance.
0: Great support.
1: Great
0: call
1: support.
0: 800
1: call
0: Alfred.
1: 800 Alfred.
2: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is your time कि आपका चांस बन सकता है जर्मनी जाने का विद द बिग टीम बिग चेक इन टू जर्मनी. आपको जवाब देना है एक बहुत ही सिंपल से जीके क्वेश्चन का. अब जब बचपन में जीके वॉज माई सब्जेक्ट आई यूज टू हेट इट क्योंकि मुझे बहुत कुछ रट्टा मारना पड़ता था, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी. बट फॉर दिस जीके इट्स नॉट जनरल नॉलेज, इट्स द जर्मन नॉलेज. इफ यू थिंक यू कैन पास, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम एंड सेंड टू दिस व्हाट्सएप नंबर 0543091062. मैं करूंगी आपको कॉल, पूछूंगी एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन फॉर जीके द जर्मन नॉलेज आपकी कितनी है कितनी नहीं है. कॉल करूंगी, खेलते हैं कॉन्टेस्ट. लेट्स सी इफ यू गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस बिग चेक इन टू जर्मनी.
2: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ and this is the time actually your time to go to Germany with us with the big team. Big check into Germany की बात कर रही हूँ मैं and मैंने आज कॉल किया है खरीजा को. Hi खरीजा.
2: Hi अवनी, how are you?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: बस ठीक, on the school run.
1: ओके, क्या करते हैं आप खरीजा?
2: मैं तो पढ़ रही हूँ अभी भी.
1: ओके, क्या पढ़ाई करते हो आप?
2: टीचिंग, लाइक कैश लेवल 3 टू बिकम अ टीचर.
1: ओ, मैं सोचूं टीचिंग एंड यू आर स्टिल स्टडिंग, फिर मुझे लगा ओ टीचर्स तो हमेशा ही पढ़ती रहती हैं इसीलिए शायद उन्होंने ये बोला. खरीजा आपने मुझे इतने मैसेजेस करें कि मुझे हिचकी शुरू हो गई है. कितना याद किया आपने मुझे?
2: बहुत. मैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते से 100-100 मैसेज कर रही हूँ एवरी डे. एक बार तो आ जाए कॉल, एक बार तो आ जाए. मैनिफेस्टिंग,
1: एक बार आ जा. आ गया. ओके फाइन. सो आर यू रेडी फॉर जीके? जर्मन नॉलेज कितनी है आपकी? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करोगे?
2: 5.
1: और मुझे फाइव व्हाट? मैं बोलने लगी थी कि आई फील स्टूडेंट्स की नॉलेज काफी ज्यादा होती है एज कंपैरेटिवली टू अ लेमैन.
2: आप मैं एक्चुअली एक मदर हूँ.
1: ओके,
2: जो आफ्टर बिकमिंग अ मदर वापस पढ़ाई चालू की है.
1: दैट इज एक्चुअली अ बिगर थिंग. फिर भी आप खुद को 5 कैसे दे रहे हो यार?
2: थोड़ा बहुत.
1: मुझे पता लग गया, बंडर प्ले कर रहे हो. विल प्ले द गेम, विल स्टार्ट द टाइमर. 10 seconds. यू हैव टू टेल मी दिस आंसर. क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ these is a German language? Your options are A, French, B, German, C, Spanish.
2: German?
1: आप question पूछ रहे हो मुझसे?
2: नहीं, मैंने actually थोड़ा voice break हो गया. Which of these is a German language?
1: Yes.
2: Okay, so it is German, French and Spanish. It's German.
1: कहा ही था मैंने. I told you, आपने underplay किया भाई, underplay किया.
2: Thank you.
1: क्या कहा जाए? क्या कहा जाए आपकी तारीफ में, मुझे बताओ आप.
2: ये गाना बेस्ट है.
1: She goes like, मैं 1 to 10 में 5 दूंगी खुद को, लेकिन मैं सही आंसर भी दूंगी. कांग्रेचुलेशंस करीजा, आपका नाम रजिस्टर हो चुका है बिग चेक इन में. लेट्स सी आप जर्मनी जाएंगे हमारे साथ या नहीं. कांग्रेचुलेशंस.
2: थैंक यू सो मच.
1: एंड अच्छा बता दीजिए कि आपने पार्टिसिपेट किया कैसे?
2: मैंने ना, लाइक आई लिसन टू यू गाइस अ लॉट. मतलब मेरे मॉर्निंग आर विद यू ओनली. तो अभी अभी मैं आफ्टरनून में भी, व्हेन आई एम कुकिंग और आई एम इन द किचन, आई हैव स्टार्टेड टर्निंग द रेडियो ऑन दैट टाइम आल्सो. तो फ्रॉम पास्ट 1.5-2 weeks आई एम गोइंग क्रेजी. आई एम लाइक, आई एम मैनिफेस्टिंग, आई एम गोइंग ऑल क्रेजी. आई एम प्रेइंग कि बस एक कॉल आ जाए, रजिस्टर हो जाए और नाम भी आ जाए. बस कुछ भी करके
1: आ जाए, फिर मैं सही जवाब तो दे ही दूंगी. इतना तो मैं खुद को जानती ही हूँ.
2: काइंड ऑफ.
1: ओके, थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू सो मच फॉर द कॉल.
1: ओके, बाय
2: बाय, टेक केयर.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: That's what exactly my heart sings जब भी मैं travel पर जाती हूँ यार.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ and a travel tourism trip की बात हो और मैं पीछे हट जाऊँ नहीं हो सकता यार. आपकी जैसी हूँ, आपकी कैटेगरी में ही आती हूँ मैं. लेकिन for this 2026 World Travel Awards इस बार जिस एमिरेट ने जीते हैं, by the way, पहले यार यूएई का हर एक एमिरेट जो है ना अपने हेरिटेज और कल्चरल के लिए अलग ही पहचाना जाता है, अलग पहचान है. लेकिन फॉर दिस 2026 मिडिल ईस्ट बेस्ट इमर्जिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन 2026 अजमान जीता है फॉर इट्स कोस्ट लाइन एंड बीचेस, हेरिटेज एंड कल्चर, मिक्स ऑफ नेचर, लेजर एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस. लेकिन मैं अभी तक अजमान अभी तक नहीं गई हूँ. लेकिन स्टिल ये तो बड़ा भाई छोटे रुस्तम निकले.
2: सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे.
0: या क्योंकि मैं अभी तक नहीं घूमी हूँ तो शायद मैं थोड़ा सोच नहीं पा रही हूँ. इफ यू हैव एवर एवर के यार बहुत लोग अजमान में रहते भी हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, कॉल करो मुझे 800-1062 पर एंड टेल मी द बेस्ट बेस्ट बेस्ट स्पॉट्स जहाँ पर आप अजमान में घूम सकते हो, आराम कर सकते हो, चिल कर सकते हो, वाइब कर सकते हो. अजमान जीत तो गया है लेकिन आप मुझे बताओगे व्हाट हैज बीन योर बेस्ट एक्सपीरियंस देयर. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 3:06।
1: Bollywood.

जैसा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी, अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ जी।

0: योर फेवरेट मील फॉर द लंच ऑन अ मंडे, भाई वो जादू का काम ही करता है।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज द पीक लंच आवर। टाइम हो चुका है, अभी तक लंच नहीं किया यार, तो कोई बात नहीं, ये खेलने के बाद आपको अच्छी खासी भूख लग जाएगी। और अगर अभी तक लंच कर चुके हो, यू माइट ऑर्डर इट अगेन। मैं बात कर रही हूँ खाओ पियो ऐश करो की। कॉल करना है आपको मुझे 800-1062 पर। आई विल प्ले दिस फूड वाली गेम विद यू, एंड अगर आप रैपिड फायर को रैपिड फायर की तरह लेकर आंसर करते हो, यू कैन एक्चुअली विन अ कपल ओपन मूवी टिकट्स। कॉल करना है मुझे 800-1062 पर। एंड अक्सर लोग ये गेम खेल करके मुझे बोलते हैं, समझ नहीं आती यार कौन सी डिश चूज करें। करवा लेती हूँ डिश चूज। 800-1062 पे मुझे कॉल करो। विल प्ले खाओ पियो ऐश करो विद यू। इट्स 3 PM लंच आवर। टाइम गोइंग ऑन। कीप इट लॉक टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड हम खेलने वाले हैं खाओ पियो ऐश करो. अगर लंच नहीं किया है अभी तक तो भूख लग जाने वाली है. लेट्स सी यू इन द कॉल. हेलो
2: हेलो. हाय अवनी, दिस इज राहिल.
1: हाय राहिल, लंच कर लिया आपने?
2: नहीं, ऑफिस में लंच नहीं मिलता, सिर्फ कॉफी पे जिंदा है.
1: आपने सुबह से कॉफी पी है? व्हाट इज दिस पूकी गर्ल बिहेवियर जो सिर्फ कॉफी पे रहते हैं पूरा टाइम पूरे दिन. आपने जनरली सुबह से सिर्फ कॉफी पी है? डोंट टेल मी.
2: आई हैड अ नाइस ब्रेकफास्ट एंड देन इट्स बीन ऑल कॉफी.
1: ओके, सो ब्रेकफास्ट में क्या खाया था?
2: ब्रेकफास्ट वाज अ फ्यू डिफरेंट थिंग, एग्स, फ्रेंच टोस्ट,
1: क्लासिक इंग्लिश ब्रेकफास्ट. ओके, लंच तो यार हम पूरा देसी करेंगे, शुरू करें.
2: ओके, लेट्स गो.
1: ओके, सो राहिल, व्हाट वुड यू चूज, पनीर मखनी या दाल मखनी?
2: दाल मखनी.
1: दाल मखनी या चने छोले?
2: दाल मखनी.
1: दाल मखनी या कढ़ाई पनीर?
2: चल दाल मखनी.
1: दाल मखनी या बटर चिकन?
2: बटर चिकन.
1: बटर चिकन या बिरयानी?
2: बिरयानी.
1: बिरयानी या छोले भटूरे?
2: बिरयानी.
1: बिरयानी या अमृतसरी कुलचा?
2: बिरयानी.
1: ओके, बिरयानी या मटन बिरयानी?
2: मटन बिरयानी.
1: मटन बिरयानी या फिर दाल मखनी?
2: मटन बिरयानी.
1: मटन बिरयानी या रसमलाई?
2: दोनों.
1: मीठा आते ही ना गुम हो जाते कि यार अब क्या चूज करें. डू यू हैव अ स्वीट टूथ?
2: आई डू, यस.
1: आई थॉट सो. नहीं कर पाए, मैं बता रही हूँ कॉफी पे इसलिए आप रह पा रहे हो क्योंकि यू लव स्वीट. आप करते हैं कॉफी में शुगर ऐड?
2: या लिटिल बिट, कट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज़ गेट थ्रू वर्क आई नीड टू हैव लाइक 3-4 कॉफी समटाइम्स.
1: राहिल, ये तो मेरी वाली बात होगी कि मैं भी क्लीन डाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, कम खाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये बिरयानी, मटन बिरयानी, दाल मखनी चूज किए बिना रह नहीं पाती. जस्ट लाइक यू.
2: एब्सोल्युटली, फूड इज द स्पाइस ऑफ लाइफ.
1: तो अब आपको लंच के लिए अच्छी खासी भूख लग गई होगी, वही ऑर्डर होगा है ना?
2: यस यस, डेफिनेटली.
1: ओके, एंजॉय योर मटन बिरयानी. थैंक यू राहिल. इफ यू वांट टू प्ले खाओ पियो ऐश करो विद मी, ऑल यू हैव टू डू इज कॉल करो मुझे 800-1062 टोल फ्री नंबर पर. 800-1062 इट इज. Until then, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. This is the Big Mix and the weekend पर रिलीज हुई है फिल्म सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार स्टारर हैवान. एंड बहुत बातचीत, बहुत हाइप थी बिकॉज इट्स अ क्राइम थ्रिलर. और ये एक मलयालम फिल्म ओपम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है, बनाया है प्रियदर्शन ने. एंड दैट इज वाई जो बाकी की कास्ट थी ना फिल्म की, वही थी जो जनरल प्रियदर्शन फिल्म में होते हैं लोग. इट हैड बोमन ईरानी, सयामी खेर, राजपाल यादव एंड सिंस इट्स अ क्राइम थ्रिलर, इट्स वेरी बेसिक, इट्स अ वन टाइम वॉच. क्योंकि मिस्ट्री जो है क्लाइमैक्स में रिवील हो ही जाती है. क्लाइमैक्स मुझे हल्का सा एक्सटेंडेड लगा. इनफैक्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म वॉज ऑल्सो लिटल स्लो फॉर मी. वाई? बिकॉज सेकेंड हाफ में इतने प्लॉट ट्विस्ट थे दैट आई वॉज हुक्ड टू माई सीट कि अब क्या होने वाला है, अगला क्या होने वाला है. एंड बाय गॉड यार, सैफ अली खान ने क्या एक्टिंग करी है. इमेजिन सैफ अली खान एर अक्षय कुमार. अक्षय कुमार के डायलॉग्स कम थे, ही वाज द विलेन, स्टिल सैफ अली खान डिड इट सो वेल. बनता है भाई, बनता है. हैवान हैज बीन रिलीज इन थिएटर्स. अगर आपको देखनी है आप जाके देख सकते हो. और छोटी सी बच्ची भी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है. इनफैक्ट इट्स अ फैमिली फिल्म. आप मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हैवान की वन टाइम थिएटरिकल वॉच तो कर ही सकते हो. टिल देन कीप इट लॉक टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: इट्स 37 डिग्रीज आउट देयर एज ऑफ नाउ एंड ह्यूमिड लेवल्स जो है 47% पे चल रहे हैं एंड काफी स्टेबल रह रहा है टेम्परेचर आजकल 37-38 तक ही रह रहा है एटलीस्ट फॉर दिस पॉइंट। लेकिन 23rd सितंबर से यूएई ऑटम ऑफिशियली विल बी देयर और टेम्परेचर और गिरेगा।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.
4: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
0: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: That's exactly what the vibe is when you are in your 20s.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. And then there is one more web show releasing जिसका नाम है Don't Be Shy. Perfect song for this, लेकिन यही song इस web show में होगा नहीं होगा पता नहीं है. Having said that, आलिया भट्ट की production है, 4 new debutants. और ये शो जो है 20 to 30s एज ग्रुप के लिए है, विच इज क्योरिक मेसी बींग इन लव हार्ट ब्रोकन ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो आप 20s में फील करते हो.
2: मेरा फ्यूचर सॉर्टेड है.
3: अच्छा चलो बताओ.
4: मुझे अपनी कंपनी अच्छी लगती है, मुझे भी लगती होगी तभी स्टॉक कर रही
5: है. प्यार तो नहीं हो गया मुझसे क्या?
6: मैं अपने सपने फॉलो करना चाहता हूँ. लाइक सिड.
5: हु सिड?
6: वेक अप सिड वाला सिड. मॉम आपने मूवी देखी?
7: इंटर्नशिप एट झुंझुनवालास, IIM स्कॉलरशिप, MBA इन फाइनेंस, फिर मयंक से शादी, फिर CEO झुंझुनवाला बिजनेस.
8: और अगर ये जैकपॉट फूट गया तो?
9: अबे धक्का से निकली हुई खीर के चावल.
0: Of course, we feel के यार 20s में सब कुछ सॉलिड है, हमारा प्लान तो बना हुआ है, लेकिन then life happens. और क्या होता है उसके बाद?
10: इससे प्रेशर है.
11: चलो मशीन ही खराब है.
10: बोला था समोसा मत खाओ.
11: ठीक है, अब से कचौरी खाऊंगा.
0: The trailer is actually very, very, very relatable because मैं भी अपने 20s में जी रही हूँ, and it's all being about sad, heartbroken, and friendships and love. Happy is the utmost feeling here.
4: Can we talk about last night?
6: Shai, we need to talk about last night.
12: How do you guys know about last night?
0: It's Arushi Bajaj, Ansh Duggal, Vyansha Arora and Piyush Khati, the 4 new actors, the 4 new debutants.
4: Shai, apni perfect image preserve karne ke liye kisi ka bhi use kar sakti.
13: Shai, tum bahut irritating ho.
10: Tu hamesha wahi karti hai jo tujhe suit karta hai.
0: It's releasing on September 25th on Prime Video. Gonna binge watch this one kyunki kafi kafi fresh lag raha hai. And if you feel the same, review bhi saath mein karenge. Until then, keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
1: बनाएंगे। Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Two best friends, one dangerous mission and chaos they never saw coming.
3: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे।
2: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu. This is
4: the Vibe. Bhagwan,
5: please, mujhe bacha le.
4: Bhagwan, please, mujhe bacha le. Nastik se aastik
2: ban gaye. Vibe, releasing 18 September. Distributed by Al Nisar Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
6: Yaar, tumne bhi bataya nahi ki duniya aisi bhi hai.
7: Mujhe khud ka pata tha yaar. Agar hoon, to hoon.
1: You are listening to The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड बात हो रही थी एडल्टहुड की, बात हो रही थी लाइफ इन योर 20s, जिस पे वेब शो आ रहा है विच इज कॉल्ड डोंट बी शाई. लेकिन होता है यार 20s में ना आप यही फील करते हो, लेकिन जब फाइनेंसिस की बात होती है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, तो लगता है कि हाँ यार थोड़ी सी पढ़ाई हमें करवाई दो. बट ना अब रोने की जरूरत नहीं है, बिकॉज creditmarket.ae, यू ऑलरेडी नो Alfred फ्रॉम insurancemarket.ae, एंड नाउ Alfred कैन हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड इन फैक्ट मॉर्गेजेस टू. सो करना कुछ नहीं है, बस जाना है creditmarket.ae पर या फिर कॉल कर सकते हो आप 800 Alfred. एडल्टहुड इजी पीजी नाउ. कीप इट लॉक टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ए मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग जियो,
3: ऑल माय फेवरेट म्यूजिक इन वन स्पॉट,
2: वीकडेज 9 PM टू 12 AM ऑन बिग 106.2, brought to you by insurancemarket.ae. Missed your morning buzz?
4: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
2: ये सुनो,
5: जो गणेश उत्सव का श्री गणेश है वो आप बिग 106.2 के स्टूडियो से करते हैं। सो टेल अस कि आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये दिन यार। मैं पूछूं तो वुड इट बी फेयर टू आस्क यू दिस क्वेश्चन?
6: नॉट एक्चुअली, बट सी वी आर रिप्रेजेंटिंग द इंडियन म्यूजिक, द फोक म्यूजिक स्पेशली इन UAE, एंड इट्स बीन 9 years, तो हमारे लिए तो एवरी जो परफॉर्मेंस होता है इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। इतना ही नहीं, हमने 130 न्यू मेंबर्स का एडमिशन लिया हुआ है इस साल।
5: कितने?
6: 130 जस्ट इन दुबई। अबू धाबी इज 80, वी हैव अ ब्रांच देयर एज वेल। तो इतने लोगों को ट्रेन किया है, प्लस हमारे जो पुराने हैव म्यूजिशियंस वो तो है ही। एंड आई एम प्राउड टू से दैट टुडे आई हैव दिस टू गाइस हु आर परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ।
5: फैंटास्टिक,
6: दे आर हियर ऑन रेडियो।
5: 3 विक्रम ग्रुप फॉर यू गाइस।

0: and action. Monday to Friday, 7 a.m. to 11 a.m. The Big Breakfast with Sid. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: E11 पर आपको कंजेशन मिल जाएगा अराउंड अलकूज बिजनेस बे डाउन टाउन अलखेल रोड E44 दिस मॉडरेट ट्रैफिक अराउंड अलकूज एंड मैदान विद स्लोअर पैचेस. E311 पर आपको मोहिजना वाली साइड एंड दुबई प्रोडक्शन सिटी पर भी काफी कंजेशन मिल जाएगा. अलसफा स्ट्रीट रोड वर्क्स एंड डाइवर्जन स्टार्ट हो चुके हैं, वहाँ पर भी आपको स्लो मूवमेंट मिल सकती है. इनफैक्ट E11 एंड E311 दुबई शारजा कॉरिडोर, ऑफकोर्स देर हैज टू बी पैची ट्रैफिक बिकॉज इवनिंग रश शुरू हो चुका है. कहीं और फंसे हो लेट मी नो 800-1062 पे कॉल करके.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big. Big 106.2.

0: life, travels, or business. Over 30,000 Google reviews, and even a metro station named after us. Call 800-ALFRED.
1: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए.
2: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहे जाने का टाइम. पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल. आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी यार के पेज पर, AVNIY AAA. लेकिन जा रही हूँ आपको चटपटे गानों के साथ छोड़कर. Coming up next, after Bang Bang, Benny Dial ka track. And kal milti hoon phir se The Big Mix 1 to 5. Until then, keep it logged to Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:09। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

90s के सभी आशिकों को अपनी स्कूल कॉलेज की आशिकी याद दिलाते हुए ये गाना, अगर आपने गेस कर लिया है, एंड यू एंजॉय सिंगिंग, डजंट मैटर, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल सिंगर, आई वांट समवन हु एंजॉय सिंगिंग, देन गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062. इट्स टाइम फॉर द कारियोकी.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Two best friends, one dangerous mission, and chaos they never saw coming.
2: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे.
1: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta, and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu.
3: This is the vibe.
4: Lord, please मुझे बचा ले.
5: Lord, please मुझे बचा ले. नास्तिक से आस्तिक बन गए.
1: Vibe, releasing 18 September. Distributed by Al Nisr Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
6: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
7: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
6: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
7: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
8: अलराज है. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
6: चलो चले अलराज.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: I think every Monday it's universe's plan कि you leave office अपने ही regular time पे, but आप घर बहुत ही late पहुंचे क्योंकि इतना traffic होता है Monday शाम को. शिकायत पर फिलहाल 47 minute delay. मैं कह रही हूँ ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या. This heavy traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed Motif to Mohesna around 48 to an hour delay. Heavy traffic if you're taking the Hesse Street all the way until Sports City. आपको slow moving traffic मिलेगा, थोड़ा बहुत ही सही traffic मिलेगा Marina से JLT भी. इसके अलावा Jaddaf, Umramool, Dubai Creek Harbour, again very very slow moving traffic. Anything else you'd like to report मुझे बताइए 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2.
10: तुम बीमार हो?
11: No.
10: तो लेती क्यों?
11: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पर उनको कंट्रोल करते हैं.
10: कैसे?

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, Monday ki sham. While you're stuck in traffic, we jam here with the karaoke. Ab do cheezon ka shauk har desi ko hai, acche khane ka and gaana gaane ka. And right now I've got Rajiv with me. Hi Rajiv.
2: Hey Mansi, how are you?
1: Good. Aapka kaisa raha weekend? What did you do?
2: Weekend was quite okay because I had gone for a quick trip to Mumbai. That was a work trip.
1: Wow. Quick trip to Mumbai.
2: Yeah.
1: Bas yehi zindagi chahiye mujhe ki bas weekend pe quick trip to Mumbai. Mausam acha ho raha tha, barish ho rahi thi, ek vada pav kha ke main wapas aa gaya. God, I'm manifesting this. Main tamatar khareedne gayi thi sir weekend par. ये मेरा वीकेंड था, सस्ते टमाटर खरीदने गई थी मैं।
2: ये टमाटर अभी हम लोग खरीदेंगे, आजकल नहीं खरीदना है।
1: राजीव, आवाज से तो लग रहा है कि आप बहुत ही कमाल गाते होगे।
2: कोशिश जरूर करता हूँ।
1: पर होता होगा ना, ऑफ कोर्स इन पार्टीज एंड ऑल माहौल तो बनाते होगे राजीव। लग रहा है मुझे, लग रहा है। ओके, सो दिस ट्रैक फ्रॉम द 90s एंड हो चुका है, मतलब सॉलिड सिंगर आया है।
0: कारियोकी।
1: So Rajiv, here's your track.
2: Is tarah aashiqui ka asar chhod jaunda, is tarah aashiqui ka asar chhod jaunga, tere chehre pe apni nazar chhod jaunga. तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
1: आपकी आवाज का असर है कईयों के चेहरे पर, आपने अपने आशिकी का असर छोड़ा होगा।
2: ऑफिस एनवायरनमेंट में हूँ मैं, आई डोंट नो वेयर आई एम स्टैंडिंग, इट्स लाइक अ गार्बेज रूम,
1: गार्बेज रूम। सारी रही है कि आपको याद ही नहीं है कितनी
2: आशिकी है, मतलब nothing like that.
1: But kehte na first girlfriend banda bhula hi nahi bhulta hai. She's always special.
2: Wo to hai. So when you ask me this question, I'm just trying to, you know, recollect. So maybe.
1: So don't tell me that you had three first girlfriends at the same time.
2: No. Never.
1: But gaya aapne bahut kamaal hai. Matlab aaj bhi aapki aashiqui wali awaaz mein utna.
2: I can do better. Trust me.
1: No. I had a lot of fun. You sang beautifully. Thank you so much. And head back home now. It's almost 6 now. Ghar jaiye. हो गया है?
2: Yeah, maybe in some time.
1: चलो जी, have a great evening. Bye.
2: Bye.
1: यही है karaoke. अगर इस गाने को सुनकर आपको भी कोई पुरानी आशिकी, कोई पुरानी याद आ गई है, and you want to sing this song, you love karaoke, give me a call on 800-1062.
0: Big 106.2, fast track song of the hour, brought to you by selfdrive.ae.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
1: Honestly, मंडे को एक ही चीज है जो आपका मूड अच्छा कर सकती है, एंड वो ये खबर है कि वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी. द बेस्ट पार्ट इज ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप है. हां जी, इट्स टाइम टू चेक इन फ्रॉम एन अमेजिंग अमेजिंग वैरायटी ऑफ ब्रेड्स, फेरी टेल कैसल्स टू ब्यूटीफुल लश डेंस फॉरेस्ट, एंड ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज जिसके लिए बहुत लोग जर्मनी जाते हैं. मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगी, बट समझने वाले समझ गए हैं. अक्टूबर में एक फेस्टिवल भी होता है उसका. ओके, यू गॉट द हिंट्स राइट. अगर आप भी हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं टू जर्मनी, वेरी वेरी ईजी. चेक इन करने के लिए आपको चेक इन करना बहुत जरूरी है, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू सेंड अस अ व्हाट्सएप. Big check-in, apna pura naam to 0543091062. That's it. That's our WhatsApp number. I'll run the randomizer in a bit and then I'll play a fun game with you. Agar aapne sahi jawab diya, aap straight up shortlist ho jayenge for this trip to Germany. So get set to WhatsApping 0543091062 par. Yahan number nahi lagta hai, to Instagram ke through bhi lag sakta hai. Our Insta handle is 106.2 Big FM.
0: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: 106.2, the beat of Bollywood. School's starting soon and we need a car.
1: And books, uniforms, everything.
0: Don't worry. I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1,099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
2: And what if we need it for a short while?
0: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: सॉलिड मंडे शाम वाला ट्रैफिक है शेख जायद पर, ऑलमोस्ट एन आवर डिले. सिमिलरली आपको ट्रैफिक मिलने वाला है शेख मोहम्मद बिन जायद पे भी, 1 घंटा 12 मिनट टू बी प्रिसाइज. हैवी ट्रैफिक उमरमूल, रासलखोर इंडस्ट्रियल एरिया, डुबाई क्रीक हार्बर, फेस्टिवल सिटी. ट्रैफिक ट्रेलिंग वेरी वेरी स्लो अगर आप उम सुकीम पे हैं, प्लस इफ यू हेडिंग टूवर्ड्स जुमेरा, ऑलमोस्ट 18 to 20 मिनट डिले. हैवी ट्रैफिक इफ यू हेडिंग टूवर्ड स्पोर्ट्स सिटी, मोटर सिटी, टेकिंग हेस स्ट्रीट. दिस ऑल्सो ट्रैफिक डिस्कवरी गार्डन से फुरजान की ओर. इसके अलावा कहीं अटके हो तो मुझे बताओ 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big.
5: Fire tu.
6: Wild fire.
7: Mera naam hai Pushpa. Pushpa Raj. Apne dam pe banaye main. Naam kaafi hai, pehchan ki zarurat nahi hai.
0: The beat of Bollywood.
8: Yo, yo, yo, yo. Got an Angela.

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: मंडे की शाम है, माहौल बना हुआ है, घर जाते जाते while you're in the traffic jam, we're jamming with the karaoke and now चित्रांश, जिन्होंने इतने शर्माते शर्माते मुझे फोन किया है. हाय चित्रांश.
2: I'm
1: good. Am I intimidating?
2: No. Not like that, but वो जैसे पहले आप conversation कर रही थी तो
1: आप क्यों शर्मा रहे हो उसमें? वो उनकी पहली girlfriends थी ना, अभी आपकी तक तो हम पहुंचे ही नहीं है.
2: बहुत पहले जाना पड़ेगा.
1: चित्रांश, what do you do?
2: I work into education sector with a startup company.
1: Oh, very nice. And you enjoy singing?
2: Yes. Absolutely.
1: तो चलो अब हम चित्रांश की आवाज में सुनेंगे ये गाना, which is honestly one of my favorite Saif Ali Khan songs. So here's your track. Let's get ready for karaoke.

0: हाँ जी आपकी आश की नेटवर्क के बाहर जा रही है सर, आपकी आश की नेटवर्क के बाहर जा रही है नेटवर्क में आगे
1: अभी
0: आ गया आवाज। यस यस यस यस

0: आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा,
1: तेरे चेहरे पे अपनी
0: नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा।
1: वेरी नाइस, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन? आई विल स्टिल आस्क। वो छोड़ के गई थी ना चित्रांश, वो छोड़ के गई थी ना? समझ गई। गाया आपने बहुत कमाल है, मतलब जैसे एकदम आप चले गए थे ना उस जोन में, मैं समझ गई थी कि जिसके लिए ये गाने डेडिकेट हुए थे वो आज कल किसी और को डेडिकेशन दे रही है अपनी। कितने साल पुरानी बात है ये?
2: Okay, I mean high school, 10th, 11th.
1: You still sound like a college boy to me, so I don't know how purana is your high school.
2: No, it's been. आपकी और मेरी एज सेम है।
1: आपको क्या पता मेरी एज क्या है? और मैं सिंगल हूँ, प्लीज मेरा माहौल मत खराब करो।
2: छोड़ के जाऊँ मैनिफेस्टिंग।
1: चलो, यू हैव अ ग्रेट इवनिंग, थैंक यू, बाय।
2: बाय।

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening. Yeah, Big Thrill and Mansi wishing you, your families, a very, very happy Ganesh Chaturthi, and hope you are enjoying your modaks, enjoying dressing up. I think it's time for us to take out all our desi outfits. अब अगले 3-4 महीने जो है OOTDs जो है देसी outfits के ही होंगे. फिलहाल दिस आर ऑफ द शो वाले हेडिंग बैक होम. ट्रैफिक बहुत ज्यादा है. हम खेलते हैं 5-second रूल, मजेदार गेम है. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी होती है विद इन 5 सेकंड्स. आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी इजी, लगता है लड्डू गेम है, बट है जलेबी सा. अगर आपको लगता है आप ये कर लेंगे, गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, टाइम राइट नाउ 6:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Introducing Alfred Coins. The new way insurancemarket.ae rewards you. Buy insurance. Earn Alfred Coins. Enjoy rewards. Call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: All right, we're playing the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I give you a few categories. Teen cheeze batani hoti hai 5 second ke andar. Sounds easy, but easy hai nahi. Filhal aa gayi hai Shilpi. Good evening.
3: Good evening. How are you?
2: I'm good. How is your Monday?
3: Monday was very boring today.
2: Yeah, Monday hamesha hi boring hota hai.
3: Weekend pe kya kiya?
2: You didn't go to office. You found it boring. 1 second. Let me just finish this. You didn't go to office and that is why you found the Monday boring. Kitne log hain jo tumhari tarah zindagi jeena chahte hain Shilpi ki Monday ko office na jaye.
3: Right.
2: Ye dekho. Ise kehte hain log jo grateful nahi hote hain. Filhal weekend pe kya kiya Shilpi?
3: Weekend pe kuch nahi kiya. Bas ghar pe khana bana khaye aur movies dekhi.
2: Filhal aisa kya karte ho aap jo aapko office na jana acha nahi lagta?
3: Main marketing mein hoon. Abhi main sun rahi thi Raveena ka.
2: Very nice. मार्केटिंग वाले तो खुशी रहते हैं क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलूंगी मेरे मार्केटिंग वाले सुन रहे होंगे फिलहाल शिल्पी विल प्ले द 5 second रूल इट्स अ फन गेम यू गेट 5 seconds आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज तीन चीजें बतानी है आपने 5 second के अंदर ठीक है
3: ओके
1: 5 second रूल ओह या
2: फटाफट से 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर वी
3: वेदिका वानी कपूर
2: सही है अच्छा टाइम खत्म हो गया फटाफट खेलने वाला अच्छा मुसाफिर कैफे वाली वेदिका पिंटू मैं उसको सुधा के नाम से ही जानूंगी आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ ऑलराइट मूविंग ऑन 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें आता है द वर्ड हम
3: दिल दे चुके सनम हम तेरे हैं कौन
2: है हम तेरे हैं कौन हम आपके हैं कौन था मैडम हम तेरे हैं कौन 3 ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रिज में मिलेंगी आपके फ्रिज में
3: बेल पेपर
2: क्या
3: दही और मिर्ची बेल पेपर दही और मिर्ची
2: ऑलमोस्ट देयर नॉट बैड 3 थिंग्स दैट आर एब्सोल्यूट नो नो फॉर यू व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप कोई भी रेड फ्लैग नहीं है शिल्पी का कुछ भी नो नो नहीं है सब चलता है
3: चीटिंग
2: नहीं बस टाइम कब का खत्म हो गया बहन मैं कह रही हूँ मार्केटिंग में हो बट डोंट सेटल फॉर बेयर मिनिमम इट इज नॉट राइट 3 things that you find only at a beach.
3: Sand,
2: और,
3: water,
2: okay.
3: and
2: chhatri. 5 second. 3 शाहरुख खान की movies. ये तो easy है यार.
3: कुछ कुछ होता है.
2: और Mr. India. दिल चाहता है. तुम office जाओ.
1: 5 second rule. Oh yeah.
2: घर पे रह के आपके मुझे हाल सही नहीं लग रहे यू शुड गो टू ऑफिस शुड आई टेल यू हाउ यू प्लेड दिस गेम
3: नो आई डोंट वांट टू नो
2: जाओ कल ऑफिस जाओ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दवाई वहीं मिलती है शायद शिल्पी को हैव अ ग्रेट इवनिंग लवली टॉकिंग टू यू गाड़ी में बहुत इजी साउंड करता है बट है नहीं आपने खेलना है तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल अपनी

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1,099 dirhams a month, flat rate. TNC apply.
2: I can't wait.
3: Okay, okay. 3, 2, 1.
2: Yes!
4: Here you go, sir. Enjoy your Papa John's new pan pizza.
2: Whoa, cheese all around.
3: And edge-to-edge toppings.
2: And crispy garlic parmesan crust, too.
3: Let me try.
2: Order your own.
4: Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Missed your morning buzz?
6: उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा।
5: ये सुनो।
7: जो गणेश उत्सव का श्री गणेश है, वो आप बिग 106.2 के स्टूडियो से करते हैं। So tell us कि आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये दिन यार। मैं पूछूं तो would it be fair to ask you this question?
8: Not actually, but see, we are representing the Indian music, right. The folk music specially right. In UAE, and it's been 9 years. तो हमारे लिए तो every जो performance होता है, it's equally important. इतना ही नहीं, हमने 130 न्यू मेंबर्स का एडमिशन लिया हुआ है इस साल.
7: कितने?
8: 130 जस्ट इन दुबई. अबू धाबी इज 80. वी हैव अ ब्रांच देयर एज वेल. तो इतने लोगों को ट्रेन किया है, प्लस हमारे जो पुराने है म्यूजिशियंस वो तो है ही. एंड आई एम प्राउड टू से दैट टुडे आई हैव दिस टू गाइस हु आर परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ.
7: फैंटास्टिक.
8: दे आर हियर ऑन रेडियो.
7: 3 विक्रम ग्रुप फॉर यू गाइस.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: If you're also interested in cars, technology and everything that moves, you have to check out Auto Drive. It is not Auto, it is OTO Drive. This is your go-to platform for everything in mobility, innovation and smart transport. Electric cars se lekar, AI-powered taxis, latest global trends. Auto Drive brings the world of wheels straight to you. इनका एक न्यूज सेगमेंट भी है ऑटो पल्स जो आपको हॉटेस्ट हेडलाइंस देता है दुबई से डेट्रॉइट तक ऑल इन अंडर 2 मिनट्स सो कीप योर इयर्स ट्यून्ड योर इंजन्स रनिंग ऑटो पल्स पावर्ड बाय ऑटो ड्राइव डेफिनेटली चेक देम आउट देयर वेबसाइट इज oto-drive.com
0: Big 106.2 Fast Track Song of the Hour brought to you by selfdrive.ae

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, yeah, Big Thrill Mansi. And of course, Shagun kar diya hai, Shagun ne call karke. Hi Shagun.
2: Hello.
1: How are you? Kahan ja rahe ho? Kahan se aa rahe ho? Hawaon ki awaaz aa rahi hai.
2: Abhi to main ghar ja raha hu.
1: फिलहाल शगुन विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट इज अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड. आई एम गोना गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें आपने बतानी है फटाफट 5 सेकंड के अंदर.
0: 5 सेकंड रूल.
2: ओह यस.
1: क्विकली टेल मी 3 सलमान खान की मूवीज.
2: प्यार क्या तो डरना क्या. और शादी करोगी.
1: यस.
2: एंड बीवी नंबर 1.
1: वेरी नाइस. 3 थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एट अ बीच.
2: सैंड.
1: और
2: पीपल इन बिकिनी.
1: क्या.
2: एंड वाटर.
1: People in अच्छा 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने ऑफिस के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं.
2: The location, sadness and work.
1: Sadness yes. क्यों है यार ऑफिस में.
2: It's like sometimes whenever it is sad, the whole atmosphere whenever it is sad, वो अच्छा नहीं लगता.
1: Alright, moving on. 3 ऐसे गाने हैं जिनमें दिल आता है.
2: दिल धड़कने दो.
1: और
2: दिल विल प्यार व्यार
1: है.
2: दिल तो पागल है.
1: 3 things that are made out of milk.
2: Milkshake, curd, पनीर.
1: I have to say Shagun. Mind blowing. This is how you play this game and you aced it literally.
2: Can I tell you something?
1: हाँ.
2: Can I tell you something?
1: हाँ ये ऑफिस में खिलाते हो क्या?
2: Like probably last month मैंने एक बार आपको कॉल किया था.
1: हाँ.
2: And I failed miserably and you actually told you are the worst caller ever.
1: अरे तो दिल पे लग गई क्या? प्रैक्टिस की?
2: तो तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ.
1: यार शगुन. बट आज तो मतलब कमाल कर दिया है शगुन ने. ऐसा एक जवाब नहीं है जो शगुन नहीं दे पाए. तो मतलब प्रैक्टिस आपकी काम आई है. सो थैंक यू सो मच शगुन.
2: थैंक यू. बाय बाय.
1: ये है 5 सेकंड रूल. अगर आपने खेलना है तो एक ही रूल है. मुझे कॉल करना है 800-1062 पर. अच्छा.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, this is the Big Thrill. मैं हूँ मानसी. आज तो बड़ा शुभ मौका है, तो आज के दिन ट्राई करना बनता है. I'm talking about this check-in to Germany, the very last week for you shortlist होने का. अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया है, WhatsApp करना है, absolutely free message है. Big check-in, your name 0543091062 पर. If you've already messaged us, अपने फोन को अपने पास रखिए, नेटवर्क में रहिए. In the next 10 minutes, I'll be running the randomizer and आपको कॉल आ सकता है. Very, very fun game. अगर आपकी जीके जर्मनी की नॉलेज ठीक ठाक है, दिस इज गोना बी इजी फॉर यू. फिलहाल स्टार्टिंग दिस आवर विद वन ऑफ माय फेवरेट कोलैबोरेशंस. वी हैव गॉट करण औजला

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:06।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: earns kilometers. Now your car insurance earns rewards. Buy from insurancemarket.ae and earn Alfred coins. Call 800 Alfred.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Good evening, ये है Big Thrill, Mansi, and of course, यहाँ पर एक thrilling, exciting, all expenses paid vacation आपका इंतजार कर रही है. We're taking you to Germany, check in करने के लिए WhatsApp करना जरूरी है 0543091062 पर, and यहाँ नंबर नहीं लगता है तो Instagram के थ्रू लग जाएगा 106.2 Big FM. Right now, randomizer ने ढूंढ लिया है इशिता को. Hi इशिता.
3: Hi Mansi.
2: How are you?
3: I'm good.
2: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू, बाद में करेंगे. आर यू एट डिज्नीलैंड?
3: पेरिस.
2: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है.
3: हाँ.
2: क्या करती हो शिता, घुमाई फिराई के अलावा?
3: आई एम अ होममेकर फुल टाइम.
2: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है.
3: थैंक यू सो मच.
2: तो आप और आपके दो है ना?
3: हाँ.
2: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों जो है बालक और बालिका पापा के साथ रहेंगे?
3: दोनों
2: बालिका
3: है.
2: अच्छा.
3: हाँ.
2: रह लेंगे पापा के साथ?
3: यस यस.
2: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने. फिलहाल वील टेस्ट योर जर्मन नॉलेज हियर. हैव यू बीन टू जर्मनी बिफोर?
3: ओह माय गॉड.
2: अभी शी वाज टेलिंग मी दैट मैं ट्रेडिंग सीख रही हूँ ऑनलाइन, तो यार मतलब थोड़ा बहुत होगा ना ठीक ठाक कि नहीं है? जीके.
3: Maybe.
2: Chalo, we will get to see. I'll be giving you three options as well, so it is going to be a little easy for you. Mm-hmm. Let's see, Asham, Ishita shortlist hoti hai ki nahi. Let's see kitni achhi inki German knowledge hai. All the best.
3: Thank you.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: Okay, Ishita, aapka sawal hai, which famous gate in Berlin is one of the most well-known landmarks in Germany? Is it the Golden Gate or the Brandenburg Gate ya phir India Gate?
3: The second option, Brandenburg Gate.
2: To ye tukka lagaya ki pata tha?
3: Nahi.
2: India Gate of course pata hoga. Golden Gate ka hai.
3: Golden Gate India mein hai.
2: Hai?
3: Shayad.
2: ये बहुत ज्यादा
3: सेकंड ऑप्शन ही है.
2: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही है गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है. आपके घर का गेट तो नहीं है?
3: नहीं,
2: गोल्डन गेट यूएस में है. बट सही जवाब दिया है, कंग्रेचुलेशंस. आप हो गई है शॉर्टलिस्ट.
3: थैंक यू,
2: कंग्रेचुलेशंस. यू वन स्टेप अवे फॉर दिस चेक इन टू जर्मनी. होपफुली द नेक्स्ट कॉल दैट यू गेट इज के बच्चों को पापा के पास छोड़ो और हमारे साथ जर्मनी चलो, तो फिंगर्स क्रॉस. बड़ा अच्छा दिन भी है, गणपति बापा आए हैं, तो होपफुली दिस वर्क्स आउट फॉर यू.
3: Yeah, thank you so much.
2: Bye, Sheeta.
3: Thank you, Mansi. Thank you.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: The Beat of Bollywood. Two best friends, one dangerous mission, and chaos they never saw coming.
1: तुम दोनों हमारे लिए इंटेल कलेक्ट करोगे और इस मिशन का हिस्सा बनोगे.
0: Get ready for Vibe, starring Kunal Kemmu, Preeti Zinta, and Sparsh Srivastava. Directed by Kunal Kemmu.
2: This is the Vibe.
3: Lord, please, मुझे बचा ले.
4: Lord, please, मुझे बचा ले. नास्तिक से आस्तिक
0: बन गए. Vibe, releasing 18th September. Distributed by Al Nisar Cinema Film. To win invites, keep listening to Big 106.2.
5: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. TNC apply.
6: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई. एकदम रापची एसी कहाँ मिलेगा बताना.
7: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना.
6: अलरास बोले तो
7: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर. शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन. हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं.
6: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी. विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर.
0: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: मंडे शाम वाला ट्रैफिक है शेख जायद पे. फिलहाल आपको 37 to 45 मिनट का डिले मिलेगा. दिस हैवी ट्रैफिक ऑन द शेख मोहम्मद बिन जायद मरिफ टू मुहेस. नाउ स्टिल वेरी स्लो मूविंग, स्टिल पैची. आल्सो 22 से 25 मिनट का डिले ऑन द हेसो स्ट्रीट इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स सिटी, मोटर सिटी. देयर इज आल्सो सम पैची ट्रैफिक नियर मरीना गोइंग टुवर्ड्स जेबीआर. एंड एक 12 से 15 मिनट का डिले फिलहाल इफ यू हेडिंग टुवर्ड्स फुरजान. एनीथिंग एल्स यू'ड लाइक टू रिपोर्ट मुझे बताइए 800-1062 पर.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big 106.2. Big 106.2.

0: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
1: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
2: 106.2 The Beat of Bollywood.

0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. High speed autobahns, majestic Bavarian castles. The ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: School's starting soon, and we need a car.
2: And books, uniforms, everything.
1: Don't worry, I found the best back-to-school rent-a-car offer on selfdrive.ae. Self-drive cars renting from just 1099 dirhams per month. Rent it for 1 to 12 months and enjoy one flat rate.
3: And what if we need it for a short while?
1: No problem. Zero penalty on early returns. Rent cars with great rates, best flexibility, and no early penalties this back-to-school season. Selfdrive.ae. Get ready, get driving.
4: Creditmarket.ae. Don't chase banks. Come to me. Credit cards, loans, and mortgages at creditmarket.ae. Call 800 Alfred. Alfred simplifies money.
0: The big mix. Miss kiya gaya?
5: हम कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
6: मैंने पूछा था कि अगर आपने 80s वाला ट्रेंड फॉलो किया है या नहीं किया है। मोहित, यस मोहित, बताइए।
7: नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया वो ट्रेंड को।
6: वाओ, हैट्स ऑफ। मतलब ये कोई मिलियन में से एक इंसान निकलता जिसने फॉलो नहीं किया है।
7: क्योंकि हमको पता ही नहीं 80s में हम क्या कर रहे थे। बॉर्न हमारा 92 का है, हमको पता ही नहीं हम 80s में क्या, कौन सी क्या थे, वही पता नहीं है हमको। एक एक चीज है, अगर इसमें कुछ ऐसा होता ना कि हम 80s में जाके कुछ कर सकते थे तो हाँ, थोड़ा सा गोल या कुछ जमीन वमीन खरीद के वापस आ जाते थे।
6: ओह माय गॉड, मैंने भी एग्जैक्ट सेम चीज कहा था कि अगर 80s ट्रेंड में वापस जाना ही है तो फिर मैं यार 1000 bucks की मैं लैंड खरीद लेती हूँ।
7: कुछ ना कुछ लेके आते तो इधर जाके 5-10 मिनट में खरीद के वो सब करके वापस आते तो इधर अभी हम लोग कुछ ना कुछ तो होते तो पढ़ाई कर लेते तो शायद कुछ बन जाते, कुछ कर जाते। तो हम भी अपने बच्चे को बोलते कि भाई मैंने ये जमाने में ये पास किया था, तुम अभी कुछ नहीं कर रहे।
0: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 PM. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: Still a 32-minute delay agar aap Sheikh Zayed pe, especially DIFC Business Bay ke paas. There is no moving traffic if you're on Dera going towards Nahada. Bag near Fahidi, Satwa, of course, festive season hai, toh Mankool, Karama side. Almost a 25 to 35-minute delay depending ke aap hai kahan pe. Thoda bahut traffic 12 se 15 minute ka still on the Hesse Street. Anything else you'd like to report, get in touch 800-1062 par.
0: Get ready for school with selfdrive.ae. Rent a car starting from 1099 dirhams a month, flat rate. TNC apply. Big 106.2. Big 106.2. Yeah!

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, यह है बिग थ्रिल कीपिंग यू कंपनी. मैं हूँ मानसी. एंड 14 सितंबर बड़ा ही कमाल दिन है. व्हेन आई टॉक अबाउट बॉलीवुड, बहुत अच्छी सिनेमा आज ही के दिन ओवर द इयर्स रिलीज हुई थी 2012 में. अ मूवी दैट आई कंप्लीटली लव, अनुराग बासु की बर्फी, रणबीर कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इलियाना डी क्रूज का डेब्यू 2018 में. अगेन अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्टोरी बाय अनुराग कश्यप, मनमर्जिया, अभिषेक बच्चन, तापसी पन्नू एंड विकी कौशल. बट आज ही के दिन 1989 एक आइकॉनिक, एक क्लासिक रिलीज हुई थी. यश चोपड़ा की मूवी है एंड दिस मूवी सेव्ड यश चोपड़ा YRF. यश चोपड़ा वॉज कमिंग ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ एक्शन हैवी बॉक्स ऑफिस फेलियर्स. Distributors initially called this movie a bad attempt because action movies late 80s mein Bollywood ko rule kar rahi thi. But jab Yash Chopra ne ye movie banayi, he revived the romantic musical genre and it also saved Yash Raj films from a heavy, heavy financial slump. Movie ke original script mein ending kuch aur thi, but mid-production Yash Chopra ne apna mind change kiya and he decided ke the main lead should go with Rohit instead of Lalit. I think I've given you enough hints. Aditya Chopra ne apne dad ko is movie mein assist kiya tha. And years later, hum jab bhi Switzerland jaate hain, दिल करता है कि वो येलो साड़ी पहनकर इस गाने को रिक्रिएट करें. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस कल्ट क्लासिक फ्रॉम 1989. इनफैक्ट रेखा जी वाज द ओरिजिनल चॉइस टू प्ले द मेन लीड, बट शी सेड नो. उन्हें लगा कि ये रोल काफी सिमिलर है टू हर रोल इन सिलसिला जो 1981 में आई थी. एंड शी पर्सनली रिकमेंडेड श्रीदेवी फॉर द पार्ट. आई एम श्योर यू हैव गेस्ड द मूवी. इफ यू हैव, 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
0: Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood. Hello.
1: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. Hello. सुन रहे हो ना?
2: Hey.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, winks, and wicked fun. Come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening. Yeah, Big Thrill with Mansi. In this part of the show, we're celebrating this cult classic, Yash Chopra ki. कल्ट है ये. अगर टॉप 10 मूवीज का जिक्र होता है तो इसका नाम आता है. स्विट्जरलैंड टूरिज्म भी काफी प्रमोट करता है इस मूवी को. एंड टुडे मार्क्स 37 इयर्स ऑफ दिस आइकॉनिक मूवी. ब्रिलियंट ब्रिलियंट लव स्टोरी. आई थिंक टिल डेट वन ऑफ माय टॉप 5 फेवरेट लव स्टोरीज में से एक. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ यश चोपड़ा रोमांस. दो जिंदगी में मेरे मैनिफेस्ट आज तक हुआ नहीं है, बट लास्ट ईयर जब मैं स्विट्जरलैंड गई थी तो मैंने ऑनेस्टली ये साड़ी वाला सीन रिक्रिएट किया था. अगर आपको मूवी याद आ गई है, 800-1062 is the number to dial. Tum,

0: 92. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: 36 degrees है, लो जाएगा अराउंड 31. फिलहाल ह्यूमिडिटी 48% पर.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सेल्फ लव का एक और एग्जाम्पल आशा मैं आपको देती हूँ। रियल लाइफ क्वीन मोमेंट वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर।
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: वो कहते हैं ना, नो वन लेट नो वन डिम योर स्पार्कल। सो व्हेन अ ग्रूम कॉल्ड ऑफ हिज वेडिंग जस्ट 7 days बिफोर द डी डे, ब्राइड ने रिफ्यूज करा टू कैंसिल द नॉन रिफंडेबल वेन्यू। शी फ्लू 30 ऑफ हर फ्रेंड्स एंड हर फैमिली टू इटली एंड देन शी हेल्ड द वेलकम डिनर। शी वोर हर ब्यूटिफुल गाउन, वॉक डाउन द आइल एंड एंजॉयड द रिसेप्शन पार्टी सोलो। इसे कहते हैं क्वीन बिहेवियर। Videos from this hashtag no groom wedding are going viral. People are having so much fun in that video. And this is also a lesson learnt. Ultimate lesson hai of not letting any ex-ooks ruin a good party for you.

0: मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धपकेंगी ना उसको।
1: ये है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फिलहाल आ रही नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से. मैं आपसे मिलूंगी अब डे आफ्टर. कल मैंने ली है छुट्टी बिकॉज आई एम सेलिब्रेटिंग गणेश चतुर्थी एंड आई गॉट सम फ्रेंड्स विजिटिंग टुमारो. यू गेट टू सी ऑल द एक्शन ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज. इफ यू नॉट फॉलोइंग अस येट, डू इट राइट अवे. 106.2 बिग एफएम इट इज. यू कैन से हाय टू मी, आई एम मानसी टॉकिंग. कांट वेट दिस ईयर आई एम कुकिंग एवरीथिंग. मैं खुद बनाने वाली हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है, अब कोई बोले ना बोले कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ का खाना बहुत पसंद है. हैशटैग सेल्फ लव. एंड ऑल्सो I have become a good cook thanks to Instagram. So you'll get to see all the action on our Instagram page, 106.2 Big FM it is. And you can say hi to me, I'm Mansi talking. Have a great, great, great evening. And once again, may Lord Ganpati bring in a lot of happiness aapki, meri, hum sab ki zindagi mein. And sari takleefe apne saath le jayen aur bahut sari khushiyan lekar aayen. Good night.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग चिल where every song feels like a deep breath after a long day only on big 106.2 the beat of bollywood

0: beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ।
3: हाय इशिता।
4: हाय मानसी।
3: यार ये डिज्नीलैंड की डीपी है क्या? रुको, हाउ आर यू? बाद में करेंगे। आई यू एट डिज्नीलैंड?
4: पेरिस।
3: पेरिस एक का ट्रिप लेगी, अब जर्मनी का भी लेगी है?
4: हाँ।
3: क्या करती हो इशिता, घुमाई फिराई के अलावा?
4: आई एम अ होममेकर फुल टाइम।
3: वेरी क्यूट पिक्चर बाय द वे, बहुत क्यूट है।
4: थैंक यू सो मच।
3: अगर आप जर्मनी हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो ये दोनों जो है बालक और बालिका, पापा के साथ रह लेंगे?
4: दोनों
3: बालिका है। अच्छा, रह लेंगे पापा के साथ?
4: यस यस।
3: वेरी नाइस, बड़ा अच्छा ट्रेन करा है पापा को इशिता ने। लेट्स सी आज शाम इशिता शॉर्टलिस्ट होती है कि नहीं। लेट्स सी कितनी अच्छी इनकी जर्मन नॉलेज है। ऑल द बेस्ट। आपका सवाल है, विच फेमस गेट इन बर्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लैंडमार्क्स इन जर्मनी? इज इट द गोल्डन गेट और द ब्रांडनबर्ग गेट या फिर इंडिया गेट?
4: द सेकेंड ऑप्शन, ब्रांडनबर्ग गेट।
3: तो ये तुक्का लगाया कि पता था?
4: गोल्डन गेट इंडिया में ही है शायद।
3: ये बहुत ज्यादा
4: सेकेंड ऑप्शन ही है,
3: विदेश यात्रा कर रही है, कह रही गोल्डन गेट जो है वो इंडिया में है। आपके घर का गेट तो नहीं है?
4: नहीं।
3: आप हो गई है शॉर्टलिस्ट।
4: Thank you.
3: Congratulations.
4: So much.
3: You're one step away for this check into Germany.
0: Okay. Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Some nights need no words. Just the right vibe. Sink into the big chill. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।